0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

0: Like a Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: है लाइका गोल्ड। CTV and C5 proudly present हमारे राम, produced by Felicity Theatre, India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy.

0: mikeamedia.co.uk।
1: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
2: हो जा दो दिलों की मोहब्बत के नतीजे, चुप हो जा अपने लाडले फूफा के भतीजे। लोरी
3: लोरी लोरी
2: ए मई लोरी, अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां। ये मर्द भी कर सकते हैं,
3: मर्द जिंदाबाद।

0: जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू,
1: थाकी गयो फरीब पर नहीं समझ तो बेशरम।
0: हाँ अब भी अगर तू चुप

0: फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के तुम।
1: ये है लाइका गोल्ड। The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Laika Gold. Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
4: T's and C's apply.
0: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
5: पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

नाद अनाहत जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And good morning to a pound in your pocket. This morning can get you 128 rupees precisely. But don't forget, when it comes to the Yono SBI UK, there are a number of ways you can do it. Just remember, remember to make your transfers via the branch online or by using the Yono SBI UK mobile app today.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.
0: Leica Gold, traffic and travel.
3: Good morning, Cameron McGarvey here. Starting with the A406 North Circular westbound stretch at Finchley, we've got one lane out at the moment with a broken down vehicle at the Edgehill Avenue, just at Henley's corner there, so do bear that one in mind. Elsewhere, main route's not looking too bad at all, actually. The A106 Grove Green Road at Leighton, still got that gas main, but continuing westbound stretch is closed between Francis Road and the High Road at Leighton. And checking out your public transport, the DLR, those engineering works are now finished and things have reopened this morning, and the tube's not looking too bad at all. Good service on most lines. Engineering works continuing though on the District Line and Piccadilly Line. That's your latest traffic and travel.
0: This is Leica Gold.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: हिल्लारो अने उम्रो जेवी क्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आया छे एक इमोशनल कॉमेडी.
6: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता.
5: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु.
6: अरे वार्ता अधूरी छे भाई.
5: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड.
7: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे.
5: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई.
8: लोकेशन अहिना करेला अहिज भोगवाना छे.
5: इन सिनेमास नहीं आयू.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today

0: की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
2: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
1: Call today on 01923 883 100
2: or go to skylordcruiseandholidays.com.
1: Book with confidence.
2: We're Atoll protected.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: लंदन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है. फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026. लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट. 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल. फॉर टिकट्स कॉल मंजीत बमरा एट 7956300367. एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344.
5: हेल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी.
6: તમારું તો જિંદગી છે કે ફિલ્મ ની વાર્તા.
5: એક ઈવ હાર્ટ જે કઈ ફીલ કરતું નહોતું, બટ વન બીટ એન્ડ એવરીથિંગ ચેન્જ.
7: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે.
5: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ.
8: એક બઢિયા કડક गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए.
9: अरे समझो हो गया, रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी. सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ. रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी.
10: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
14: अ रिलायबल एयरलाइन, excellent in-flight entertainment and delicious food, all this at a low price. Connect with Travel in Style, great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget only at Travel in Style. 0208-954-0077.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द स्टार टूर्स एक्सपीरियंस. विजिट startours.co.uk.

0: basmati rice.
1: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
2: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
3: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
2: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
5: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
6: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
5: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
6: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
5: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
6: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
5: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
6: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
7: બોલે તુને ક્યા કર રહા હે રે?
8: અરે ગુરુ, આપકે શો કી ટિકિટ ઢૂંઢ રહા હું.
7: યે તો બતાઓ, કોઈ પતા ચલા?
9: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
10: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र.
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
12: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasa.

बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office. On 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai. London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, shaam 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
4: हिल्लारो अने उम्ब्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी
5: तमार तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता
4: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज
6: तमारो हृदय धबकारो चुकी जाय छे
4: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आरजव देसाई इन सिनेमास नियर यू
7: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए यूनिक मसाला चाय इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 073-7522-4418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
11: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई जिनके लिए ये होशियार आपको कर रहे हैं वो तो है नहीं यहाँ पर। जी हाँ रवि शर्मा जी, ये उन्हीं का शो है। उनकी गैर हाजिरी में मैं इस हॉट सीट पर बैठी हूँ। आशा करती हूँ कि जिस प्यार से आप उनका इंतज़ार करते हैं मेरा भी कर रहे होंगे। मैं अब हाजिर हूँ और नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए आप मेरे हैं। जी हाँ आप मेरे हैं, मेरा साथ निभाएंगे। अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करना है मेरा काम, और आपका काम है बस इस बात का एहसास दिलाना कि आप मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं, और इसी में हर प्रेजेंटर को खुशी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम विद बैक टू बैक 2 जबरदस्त गीतों के साथ।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica.

गुड मॉर्निंग टू यू। 18 मिनट्स आफ्टर 10 o'clock, मैं सरिता सबरवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। जहाँ भी बैठे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, इस रेडियो के साथ जुड़े हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके कानों में मीठे मीठे गीतों का रस घुलता रहेगा और घुल रहा है। लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए आप कहाँ बैठे इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, लाइका गोल्ड पे सुन रहे हैं तो अवेलेबल ऑन 10:35 AM DAB एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com। और अगर मिडलैंड्स में सुन रहे हैं तो किस जरिए से सुन रहे हैं मुझे बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगी टिल 1 o'clock, और 1 बजे के बाद आते हैं बाली ब्रम्बर जी और उनके बाद सैंडी शाह एंड देन इन द इवनिंग अश्विनी। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है और रात को फिर हमारी गोल्डन नाइट्स होती हैं जिनमें बड़े प्यारे प्यारे गीत आपको सुनने को मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं बता दूं कि प्रोग्राम में क्या चल रहा है। कुछ न्यूज़ हेडलाइंस रहेंगी, 11 बजे के बाद चिंतन होगा एंड कुछ एक ऐसी फिल्मों के गीत सुनाऊँगी जो आज के दिन रिलीज़ हुई या फिर किसी का बर्थडे है तो उन्हें मुबारकबाद देंगे। अगर आपका भी बर्थडे है आज तो हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए, वेडिंग एनिवर्सरी है या कोई और खुशी का मौका है तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके नाम। हाँ, ये तो पूछा ही नहीं, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं और हमेशा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते, चहकते महकते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना तो हमेशा मैं आपके लिए करती ही हूँ और करती रहूँगी। एंड अगर किसी वजह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े सुस्त हैं आप, बीमार हैं आप, तो आपके लिए यही कहूँगी, जल्दी से ठीक हो जाइएगा। और इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते हुए गुनगुना

0: लगाना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है. यू कैन डू इट बाय अ ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप. लेकिन आज रेट क्या आपको मिल रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो आज आपको 1 British sterling pound के बदले मिलेंगे वाव 128 rupees and 75 paisas अगेंस्ट 1 pound. और डिपेंड करते कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा आपको रेट मिलेगा.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: बे प्रोग्राम के पहले दो गीतों में दोस्ती का जिक्र हुआ, तो ये मत सोचिए सारे के सारे गाने दोस्ती पर ही मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ. लेकिन आज के प्रोग्राम का अगला गीत कुछ दोस्ती पर ही है, वो भी आप इंजॉय करेंगे. लेकिन उससे पहले
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Chase is the digital bank that gives you 1% cash back on groceries.
4: So, can I get cash back on cake mix?
3: Indeed.
4: And icing?
3: Yep.
4: And sprinkles?
3: Sure.
4: And candles?
3: Yeah. And you can turn all that cash back into a nice birthday treat.
4: How do you know it's my birthday?
3: Just a hunch. Get 1% cash back on groceries, fuel and everyday transport when you spend with Chase. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. 1% cash back on this debit card spending for your first year. Maximum £15 per month. Eligibility and exceptions apply. May be changed or withdrawn.
1: This is Leica Gold.
5: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077. दैट्स 02089540077. आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
6: ट्रेवल इन स्टाइल.

0: से।
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए।
1: जिंदगी वहां सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
3: हेल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लईने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
4: તમારે તો જિંદગી છે કે ફિલ્મ ની વાર્તા,
3: એક ઈવ હાર્ટ જે કઈ ફીલ કરતું નહોતું,
5: મારી વાર્તા અધૂરી છે ભાઈ,
3: બટ વન બીટ એન્ડ એવરીથિંગ ચેન્જ્ડ,
6: તમારું હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે।
3: ધબકારો સ્ટારિંગ દેવેન ભોજાની અને આર્જવ દેસાઈ।
7: લોકેશન અહીંના કરેલા અહીં જ ભોગવવાના છે।
3: ઇન સિનેમાઝ નિયર યુ।
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635 757। Greens by Daniel, prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai।
11: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
11: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
14: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
13: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514540। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
15: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
16: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
17: Lights on, shutters up, staff ready.
16: But today's customers don't start on the high street.
17: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
16: And if your business isn't there, they don't walk past your

0: shop.
1: They walk into your competitors.
0: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
5: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
4: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
6: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. आज ही एक्शन ले 0208-907-2444.
7: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Film Khudgar se liya tha maine is geet ko, 1987 ki film thi. और मेरे वो साथी जो बराबर मैसेजेस लिख रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच. इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिएगा. लिस्ट बहुत लंबी है इसलिए सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, पर आइए अब ज़रा आपको वाकिफ करा दें लेटेस्ट न्यूज़ के साथ.
0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
2: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद एक नाम प्रमुखता के साथ सामने आया है और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने न केवल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सत्ता को कड़ी चुनौती दी बल्कि राज्य में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद वे मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. उन्हें भूमिपुत्र और बंगाल का योगी भी कहा जाता है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर बांग्लादेश की राजनीति पार्टियों के भीतर भी कई तरह के चर्चे हो रहे हैं. राज्य में करीब डेढ़ दशक बाद ममता बनर्जी की सत्ता से बाहर होने और पहली बार बीजेपी के आने को लेकर बांग्लादेश में काफ़ी उत्सुकता है. बंगाल में सीएम पर फैसला कराने खुद जाएंगे अमित शाह. असम की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 20 साल पहले जैसे आए हैं. थलपति विजय की पार्टी टीवीके भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अपने दम पर सरकार बना सकते हैं. दक्षिणी ईरान के डेयर बंदरगाह पर कई जहाज़ों में आग लगी है. वहीं लेबनान में इजरायली हमलों में 17 लोगों की मौत के बाद मिडल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ गया है. यूएई के फुजेरा में कथित रूप से ईरान के ड्रोन अटैक में 3 भारतीय घायल हुए और पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, भारत मजबूती से यूएई के साथ खड़ा है. अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे महायुद्ध की आशंका के बीच आज तक की टीम वॉरजोन पर से पल पल की खबर पहुंचाने के लिए ईरान पहुंची है. और तेहरान में इनकलाब रुकियार पर सरकार में के समर्थन में भारी भीड़ इकट्ठा हुई. इसराइल और अमेरिका को ईरान की एकजुटता का संदेश दिया है. शेयर बाज़ार की बात करें तो शेयर बाज़ार में बीते कारोबारी दिन में की तूफानी तेज़ी पर ब्रेक लग गई है. ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बड़ी तनातनी के चलते हुए निफ्टी सहमे हुए नज़र आए और गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुए हैं. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता संतोष नायर का 65 ईयर्स की एज में एक कार दुर्घटना के बाद निधन हो गया. उनकी पत्नी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है. पठान मिट्टा के एनाथ के पास उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई. एक्सीडेंट के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल भेजा गया, ले जाया गया, लेकिन उनका इलाज चल रहा था पर वो नहीं बच पाए. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे. ये थी कुछ मुख्य समाचार. चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके साथ शेयर कर लूं. उम्मीद है इतने दिनों बाद जब इस गीत को सुनेंगे तो पसंद भी करेंगे.
0: लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.
3: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई,

0: Breaker Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: चलिए भैया आपको बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, एक पाउंड के बदले आपको क्या मिल सकता है। तो जानने के लिए आप तैयार हैं तो बताने के लिए मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। तो जान लीजिए, एक पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज़ 129.14, पाकिस्तानी रुपीज़ 377.61, बांग्लादेशी टका 166.28, अफगानिस 85.40 एंड नेपलीज रुपीज़ भी बता देते 206.72 एंड यूएस डॉलर्स 1.34।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: चलिए गोल्ड रेट पर एक नज़र डालते हैं। आज गोल्ड कितने का बिक रहा है, 108 pounds and 25 pence का 1 gram सोना।
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है Like a Gold.
0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: Right, भी कल के मैच तो हो चुके और आज किसका मैच है? आज का मैच, right? दिखा रहा है कि ICC वीमेंस चैम्पियनशिप है और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया में 47th मैच था कल, जिसमें मुंबई इंडियंस 1/6 विकेट्स एंड गुजरात टाइटंस एंड पंजाब के बीच में था मैच। तो आज कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि ICC के मैच चल रहे हैं।
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
3: ये है
2: Like a Gold.
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं इस वक्त ये प्रोग्राम अपनी प्रेजेंटर सरिता के साथ। आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं और भेजते रहिए। अगर आपने भी कोई मैसेज लिखकर भेजना है तो काम बड़ा आसान है। यू कैन व्हाट्सएप अस योर मैसेज। किसी की शादी की सालगिरह, किसी का बर्थडे और आप बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शाउट आउट हो ऑन रेडियो, तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ।
0: WhatsApp message Like a Gold now on 07424 23 23 23।
1: और गीत तो सभी आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। आपके एनकरेजिंग मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अगला गीत हमें न्यूज़ तक पहुंचाएगा और न्यूज़ के उस पार मैं चिंतन लेके आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। सो मेरा साथ इसी तरह से देते रहिए। आइए बढ़ते हैं इन मैसेजेस की जानिब और फिर एक प्यारा सा गाना।
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 02085748410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
7: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
6: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
7: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
6: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education and contemporary events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड
1: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कचोर साउथॉल
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
2: Plus, beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
4: This Eid skip the queues and save with Ambala pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
5: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin-starred dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
7: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Laika Gold
8: The Ravi Sharma Show on Laika Gold.

जैसे कि मैंने कहा, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक झकझोर देने वाला आईना है। इसमें तन्हाई है, पछतावा है, एक पिता का इंतज़ार है और एक अनजान लड़के का दिल बदल जाने की यात्रा है। और वो क्या कहता है? कहता है, मैं ज़्यादातर शाम की शिफ्ट करता हूँ। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया, रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। और एड्रेस था एक पुराने शहर के हिस्से का, एक जर्जर सी बिल्डिंग, पुरानी सी बिल्डिंग और ऊपर 3री मंजिल। डोरबेल दबाई, दरवाज़ा एक बूढ़े बुजुर्ग ने खोला। सफ़ेद बाल, कांपते हुए हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा, दाढ़ी बड़ी हुई, पुरानी सी एक कुर्सी, हाथों में सहारे के लिए एक छड़ी और चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज़ में बहुत मिठास। बोले, बेटा ज़रा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं ना। मैं खाना टेबल पर रखकर मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी, शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। थोड़ा थका भी हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर और सामने दीवार पर दर्जनों फोटोज थी। उन्होंने थाली खोली, धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगे। हर 2 कौर के बाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। फिर बोले, जानते हो बेटा, मैं रोज़ बाहर से खाना नहीं मंगाता। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया, ये मेरी पत्नी है, स्कूल में टीचर थी, 5 साल पहले मुझे छोड़कर चले गई। फिर दूसरी तस्वीर, ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी देर चुप रही, मुस्कुराई, मगर इस बार आंखें भीग गई थी, बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक कौर और खाया, धीरे से बोले, ये बेटी है, बंगलुरु में रहती है, इसकी अपनी दुनिया है और अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए, बच्चे अगर उड़े नहीं तो माँ बाप ने पाला ही क्या। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई, मन भर सा गया, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस सिर्फ और सिर्फ खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे माँ पिताजी हैं? मैंने कहा, हाँ पिताजी हैं। पूछा, फ़ोन करते हो रोज़? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था, थकान, काम, भाग दौड़, हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर दूंगा।

उन्होंने मेरी चुप्पी को पढ़ लिया। हल्की से बोले, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ टूट गया। खाना खत्म हुआ, उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाए। ले लो बेटा, ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने मना किया, नहीं अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। वे मुस्कुराए, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर पिताजी को फोन जरूर करना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की, पहले पिताजी को घर में फोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, आज अचानक सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा, हाँ पिताजी, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर पिताजी ने पूछा, कैसे हो, खाना खाया? और मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज़ पिताजी को फ़ोन करने लगा, और सिर्फ पिताजी को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए एक सिर्फ ऑर्डर नहीं रही। किसी घर में दवा जाती, किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतज़ार, किसी घर में बस एक आवाज़ की ज़रूरत होती। मैं अब दरवाज़ा खुलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, कभी कुछ पूछ भी लेता हूँ। पूछता हूँ, और सब ठीक है? ज़्यादातर लोग बस हाँ कहते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं, और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद इस बार उसी पते पर फिर से ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया, दरवाज़ा किसी और ने खोला, पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, बुज़ुर्ग पिछले हफ्ते चले गए। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, हाथ खाली थे, लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा सा लिफाफा लाकर मुझे दिया, तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। कांपते हाथ से लिफाफा खोला, अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुका हूँ, धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए, तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया, और हाँ, माँ पिताजी को फ़ोन करते रहना, एक पिता। आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग के अंदर वाली जेब में रखे हुए हैं, खर्च नहीं किए, क्योंकि उस रात पहली बार समझ आया, हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक माँ होती है तो कभी एक पिता होता है, कभी एक इंतज़ार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं, किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा, और किसी को बस 2 मिनट का साथ। इंसान को हमेशा पैसा नहीं, कुछ पलों का साथ, और कभी कभी बस दूसरे की मौजूदगी। ये थी डिलीवरी, ये डिलीवरी नहीं थी बल्कि ये हृदय परिवर्तन था। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ इंतज़ार बहुत बड़ा। पिता की तन्हाई, इंतज़ार, टूटे मन की धड़कन, जो बच्चों की आवाज़ सुनना चाहती है, उनका साथ चाहती है। और इसी के साथ ये चिंतन यहीं समाप्त होता है, लेकिन ऐसे ही भाव कुछ इस गीत में भी हैं। जितना हो सके अपनों को वक्त दीजिए।

0: ये था आज का चिंतन जिसने बहुतों को रुला दिया। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं, थैंक यू एवर सो मच, थैंक यू। और सबने तकरीबन यही लिखा है, ये हर घर की आज कहानी है। किसी ने कहा मुझे अपने पिताजी की याद आ गई, किसी ने कहा मेरी माँ की याद आ गई। सरिता जी वेरी इमोशनल था, तो आप क्या समझते हैं मैं इमोशनल नहीं हुई? मेरी भी आंखों में आंसू हैं। पिता की तन्हाई, इंतज़ार, टूटे मन की धड़कन, जो बच्चों की आवाज़ सुनने को तरस जाते हैं, वो उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं। हो सके तो जितना भी वक्त आप बिता सके अपने बुजुर्गों के साथ बिताइएगा। धन्यवाद।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, by one sterling pound in British sterling today can get you a very very good rate. और आज का rate क्या है मैंने earlier on भी आपको बताया था, इसलिए देर मत कीजिएगा, पैसे आज ही transfer करा लें। 128.75 यानी कि 128 rupees and 75 पैसास आपको मिल सकते हैं अगर आप SBI के ज़रिए पैसे transfer कराएंगे। बहुत काम आसान है आपका, transfer by branch, online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: ये है Leica Gold. 10:35 AM.

0: जी हाँ, इतना खूबसूरत गीत और आपकी एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच, बड़े प्यार से सुन रहे हैं आप। लाइक अ रेडियो नेटवर्क इज सेलिब्रेटिंग SBI UK गोल्डर्स ग्रीन ब्रांच 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन थर्सडे 7th मे फ्रॉम 11 AM। सो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं हमारे काजल एंड दीप राजा को, तो वहाँ पहुँच जाइएगा 11 बजे थर्सडे 7 मई को। And you can join Kajal, who hosts the special celebration, and Deep Raja will be there. And the event will take place at SBI UK Golders Green Branch, 630632 Finchley Road, opposite Golders Green Underground Bus Station.
1: This is Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like our gold.
0: Like our extra podcast updates.
3: राइट भैया, आपको बता दें कि अगर आप पॉडकास्ट पे हमारे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो बहुत आसान है काम. यू कैन वी आर अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. और इस बारी का जो एपिसोड 14 है, दैट इज़ अबाउट UKAFF यानी कि UK एशियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में है, जो 1 तारीख को शुरू हुआ और 10 तारीख तक चलेगा. एंड रूबी रजा ने बात की है राउंड टेबल, तो जरूर देखिएगा.
0: Like extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold.
4: Like a Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
0: Come.

0: प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में हमने कदम रखा है। उम्मीद करती हूँ कि बैक टू बैक दोनों गाने आपने पसंद किए। लेकिन बता दूं कि नेक्स्ट आवर में भी मैं आपका साथ देने जा रही हूँ। बाली जी विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, और फिर फॉलोइंग टू आवर्स सैंडी शाह आपके साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट आवर भी आप ही के साथ है, आपकी अपनी सरिता सबरवाल। आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू एवर सो मच। और भेजते जाइए व्हाट्सएप मैसेजेस, मुझे मिल रहे हैं बराबर। मैंने आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सभी को जवाब भी दिया है, और जिन्हें नहीं दिए ज़रूर दे दूँगी आपको भी जवाब। लेकिन मैसेजेस भेजते रहे ताकि मुझे ये ना लगे कि स्टूडियो में मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मैं आपका साथ चाहती हूँ टिल 2 o'clock टुडे। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ। नहीं नहीं नहीं, पहले ये वाला काम कर लें जरा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, State Bank of India के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में तो आज तो बहुत अच्छा रेट है। 128 रुपीस और 75 पैसास पर 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। वाओ वाओ। एंड डिपेंड करते हैं कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। जितना बड़ा अमाउंट होता है उतने अच्छे पैसे कन्वर्शन रेट आपको मिल सकते हैं। और ये काम बड़ा आसान है। यू कैन मेक ट्रांसफर बाय अ ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
3: Like a Gold.
2: Like a Gold.
0: और भी अगले गीत से पहले कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन गाना मेरे भी दिल के करीब है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। और हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक कौन है? आशा पारिक जी। तो उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। इंतज़ार कीजिए गीत के लिए, लेकिन बता दूं वो फिल्म मेरे सनम से है जो 1965 में आई थी।
3: ये है
2: Like a Gold.
4: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto twin city center break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-center city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
5: Call 01923 883100. Atoll protected.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
7: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
12: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: Travel in Style specialise in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Fully bonded, Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
14: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
15: Atif Aslam live in the UK.
16: Okay.
5: Cardiff Uslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
16: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: Leica Gold, officially London's number one Asian Retro Music Station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आशा पारिख हमारे इस हफ्ते की आर्टिस्ट।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Dil apna aur preet par aaye. Is film ka geet 1960 ki film thi. Lata ji ki aawaz mein aap sunne ja rahe hain ye khoobsurat sa geet. आप तक पहुंचा रहे हैं डेरी वैली वाले।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और सरिता आपको कुछ याद दिला रही है, मेला है कब होने वाला है ये मेला। लाइका रेडियो इज एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबी पार्क, ऑल्सो द ब्रैडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st एंड 2nd ऑगस्ट एट सिटी पार्क एंड सेंचुरी स्क्वेयर। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि लाइका रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं laikaradio.com पर।
0: दिस इज लाइका गोल्ड।
3: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलीशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।
4: I'm

0: ऐसे जैम सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं सुनने के लिए मिलते हैं। यस, बहुत ही प्यारा संगीत था। फिल्म का नाम था देवर, मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत। वाओ, आपको पसंद आया, अच्छा लगा जानकर। राइट, अब एक बार फिर से ज़रा याद दिला दूं, लाइका रेडियो नेटवर्क की सेलिब्रेटिंग SBIU के गोल्ड स्क्रीन ब्रांच 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन थर्सडे 7th May फ्रॉम 11 AM। काजल विल होस्ट स्पेशल कवरेज फ्रॉम इवेंट एंड दीप राजा विल ऑल्सो बी in attendance. And the event takes place at SBI UK Golden Screen Branch, 630-632 Finchley Road, and it's an invite-only event. So, आप सुन सकते हैं वहाँ से। अगर लिंक्स होंगे तो आप काजल की आवाज़ भी सुनेंगे और वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में भी जान पाएंगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 PM. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07977
4: धबकारो
3: स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
1: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड।
5: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
6: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
7: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
6: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: ये वाला गाना मैंने स्पेशली किया सुदेश जी आपके नाम, आज अपना बर्थडे मना रहे हैं आप. आपने लिखा है, हाय सरिता जी, लवली प्रोग्राम, प्लीज़ कैन यू प्ले अ नाइस सॉन्ग, अ हैप्पी बर्थडे एज इट्स माय बर्थडे, माय डॉटर सोनिया टक्यार एंड ग्रैंडसन रूबन टक्यार, तीनों आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. एंड ऑल थ्री ऑफ अस आर बॉर्न ऑन 5th of May बर्थडेज. बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपके सारे परिवार को भी. एंड बहुत अच्छी तरह से बर्थडे मनाइए, जो कुछ भी कीजिए हमें अपने साथ रखिएगा. कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू.
2: ये है लाइका गोल्ड. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you today. Indian rupees 128.94, Pakistani rupees 377.45, Bangladeshi taka 165.88, Afghani is 85.72, Sri Lankan rupee 433.24 and US dollars 1.35.
2: Leica. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 108 pounds and 43 pence पर ग्राम.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica
2: Radio, finalist at the Radio Academy.

0: Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: Right, IPL के matches के बारे में बता दें आपको. Indian Premier League का match है आज. 48th match होने वाला है Delhi Capitals and Chennai Super Kings के बीच. And match will start at 3 PM. So जैसे जैसे match आगे बढ़ेगा हम आपको बताते रहेंगे कि score board क्या कहता है.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: ये है Leica Gold.
1: जी हाँ, मेरा और आपका साथ वैसे यही खत्म होने वाला था आज के लिए, लेकिन आज बाली जी नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट आवर में मैं आपका साथ निभाऊंगी एंड उसके बाद फिर सैंडी शाह आपके साथ रहेंगे टिल 7 o'clock. सो सुनते रहिए, अभी मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ. अगला गीत महेंद्र कपूर एंड लता जी की आवाज में आफ्टर दिस.
3: तू क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
3: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र.
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. To book all 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
2: Exclusive radio partner Leica Gold.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक था फिल्म अजय से 1996 की फिल्म थी और दूसरा गीत मैंने चुना था फिल्म दर्द से 1981 की फिल्म। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। पहले गीत में आवाज़ थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, तो दूसरा गीत गाया था आशा भोसले एंड किशोर दा ने। एंड आज जैसे कि आप जानते हैं कि बाली जी आज किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो इस आवर में मैं आपका साथ दूंगी, बट नेक्स्ट टू आवर्स सैंडी शाह विल बी विद यू और फिर उनका अपना शो होगा और ड्राइव टाइम में भी आपको ड्राइव करते करते पहुंचा देंगे आपके मंजिल तक। सो जो मेरे साथी अभी भी मैसेजेस लिख रहे हैं और प्रोग्राम के सभी गीतों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बाली जी के प्रोग्राम में ट्रिब्यूट्स होती हैं तो आज एक ख़ास दिन है और आज वो याद करते नौशाद साहब को। नौशाद साहब जिनकी आज पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है, 5 मई 2006 में उनका देहांत हुआ था और 25 दिसंबर 1999 में उनका बर्थ हुआ था। मैं इस आवर में सिर्फ दो गीत उनके कंपोज किए सुनाऊंगी एंड हो सकता है कि सैंडी शाह पूरी ट्रिब्यूट करें उन पर, क्योंकि वो तो वैसे भी माहिर है ना। मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके इतने गीत गाए हैं, तो सैंडी विल बी प्लेइंग फ्यू सॉन्ग्स ऑफ नौशाद जी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लें कि क्या रेट दे रहे हैं SBI वाले।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे इंडिया में आज ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रेट है एंड आपको मिल सकते हैं एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 रुपीज़ एंड 75 पैसे, पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना अच्छा रेट मिलेगा और काम बड़ा आसान है। आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं पैसे वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Like a Gold.
2: Like a Gold.
4: Gemin Gold Afternoons with Bali Brambert.
5: Bali Brambert.
4: Gemin Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
6: Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
7: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
6: Call today on 01923 883 100
7: or go to skylordcruiseandholidays.com.
6: Book with confidence.
7: We're atoll protected.
8: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल एवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह फरी एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी।
9: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता।
8: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु।
9: अरे वार्ता अधूरी छे भाई।
8: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड।
10: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे।
8: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई।
11: लोकेशन अहीं ना करेला अहीं ज भोगवाना छे।
8: इन सिनेमास नियर यू।

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा
1: अवेलेबल एट फल्कन स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड
2: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथॉल
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
3: Plus, beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture. Now open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
7: एक बढ़िया कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए
8: अरे समझो हो गया रॉयल चाय है ना अब भी बन जाएगी सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो चाय तैयार वो भी रॉयल टेस्ट के साथ रॉयल चाय झटपट कहीं भी कभी भी
0: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner.

0: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और इसी के साथ मैं जरा जल्दी से आपको याद दिला दूं, लाइका रेडियो नेटवर्क की सेलिब्रेटिंग SBI UK गोल्ड स्क्रीन ब्रांच 50th ईयर विद अ स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन थर्सडे 7th मे फ्रॉम 11 AM. काजल विल होस्ट स्पेशल कवरेज फ्रॉम इवेंट एंड दीप राजा विल ऑल्सो बी इन अटेंडेंस एंड द इवेंट टेक्स प्लेस एट SBI UK गोल्ड स्क्रीन ब्रांच 630-632 फिंचली रोड एंड इट्स एन इन्वाइट ओनली event.
1: ये है Like a Gold 10:35 AM.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: जी हाँ, मैं बाली नहीं हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं बाली जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं गाने बाली जी, कहाँ है ये आवाज़ बाली जी की लग रही है आपको क्या? हाँ हाँ, ओके, एंड हम जरा याद दिला दूँ कुमार सानू के लाइव कॉन्सर्ट के बारे में. द किंग ऑफ मेलोडीज़ कुमार सानू रिटर्न्स टू द यूके फॉर वन नाइट ओनली. कैच द सुपर स्टार सिंगर एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th ऑफ मे एंड गेट योर टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू और टिकट मास्टर. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो नेटवर्क.
2: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Lyca Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
4: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: London Entertainment di sab to vaddi raat aa rahi hai. Four Pillars Entertainments Limited presents ABPD Awards UK 2026. Live performances by Naveen Kundra, Manjeet Bobby, Nikki Sethi, te hor zabardast artists. 9th May, sham 6 baje, The Center Banqueting Suite, South Hall. For tickets call Manjeet Bhamra at 7956-300-367. ABPD Awards UK 2026. Exclusive radio partner Lyca Radio Network.
8: Two businesses.
9: Same town.
8: Same service.
9: One appears on page one of Google.
8: The other doesn't.
9: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
9: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
9: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
9: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
10: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
11: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
12: A reliable airline, excellent in-flight entertainment and delicious food. All this at a low, low price. Connect with Travel in Style. Great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget. Only at Travel in Style. 0208-954-0077.
2: Lyca Radio Network. Proud hospitality partner

0: ऐसे ऐसे गीत हमें दिए नौशाद साहब ने। नौशाद अली साहब आज के ही दिन हमें छोड़कर गए थे, 5 मई 2006 में उनका देहांत हुआ, लेकिन आज भी उनके कंपोज किए हुए गीत हम गुनगुनाते हैं और इन गीतों को बहुत पसंद करते हैं। इनके बारे में बहुत सी जानकारी सैंडी शाह आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैंने 3 गीत चुने। एक गीत आपने अधूरा सा सुना मेरी आवाज़ के साथ और 2 गीत और हैं आप सुन पाएंगे आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। और मुझे अब माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त देंगे, उनकी बहुत सी यादगार में है, बहुत से अच्छे अच्छे गीत हैं फ्रॉम द फिल्म संयोग, गीत जीवन, पहले आप, सन्यासी, कीमत, ऐसी बहुत सारी दर्द, ऐसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, बैजू बावरा। तो आप सुनते रहिएगा इसी तरह से और मैं कल आपसे मिलने पहुंच जाऊंगी। बाय फॉर नाउ।
1: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द फैमिली? इन टाइम्स ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ, ओम फ्यूनरल केयर इज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट विद ऑल कस्टम्स एंड रिचुअल्स। एट कैंटन रोड इन वेस्ट लंदन एंड इलफर्ड इन ईस्ट लंदन, ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part? Townhouses and villas greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry em shape mein hai wo bachpan ki yaad.
9: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaymin's fry ems in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shizwan with best quality and same ethnic taste.
8: Jaymin fry ems available at your nearest ethnic grocery stores.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
12: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school far too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
13: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEID. Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
15: Across London, this is Ballybrambat on Like a Gold.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
1: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही
2: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
3: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
2: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
3: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
2: दर्शन पण अने यूरोप पण
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
2: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
5: looking for your next cruise getaway
6: explore the Mediterranean Northern Europe the Caribbean or even around the world with traveling style every trip is tailored to you
5: from relaxation to adventure call 02089544077
6: or email info@travelingstyle.co.uk
5: 24/7
6: traveling style
5: where your dream holiday begins
6: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra Podcast, it's a UK Asian Film Festival Roundtable Special, hosted by Ruby Raza.
8: It's such a pleasure to welcome the team of the UK Asian Film Festival.
9: What is particularly very touching for me, a lot of these films will never see the light of day. They won't get distribution, so you miss them at these festivals, it's gone.
7: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम ऑफ काजल्स कुचोर साउथहॉल
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02023963 5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Hillaro and Umbro Jevi acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah. For ek var leine aavya che ek emotional comedy.
10: Atamar to jindgi che ke film ni vaarta.
9: Ek you heart ji kai feel kartu natu. But one beat and everything changed.
11: Tamaru hriday. दबकारो चुकी जाए।
9: दबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई इन सिनेमास नियर यू।
12: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट, स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड।
13: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
14: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
15: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
14: Call today on 01923 883 100
15: or go to skylordcruiseandholidays.com.
14: Book with confidence.
15: We're Atoll protected.
16: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords or tenants ke liye fast action lete hain aur residential or commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call karein 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Mohammed Rafi saab ki awaaz from Kohinoor 1960. Got a few messages coming. Uske baad awaaz suninge, rare one with Chuni. I think that this person only sang it, sang one album with Naushad. Shanti Mathur, film ka naam Son of India, straight after the adverts.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: हिल्लारो अने उम्रो जेवी अक्लेम्ड गुजराती फिल्म्स ना नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक शाह पर एक वार लेने आव्या छे एक इमोशनल कॉमेडी.
6: तमारो तो जिंदगी छे के फिल्म नी वार्ता.
5: एक यू हार्ट जी कई फील करतु नतु.
6: मारी वार्ता अधूरी छे भाई.
5: बट वन बीट एंड एवरीथिंग चेंज्ड.
7: तमारो हृदय धबकारो चूकी जाय छे.
5: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई.
8: लोकेशन अहीना करेला अहीज भोगवाना छे.
5: इन सिनेमास नहीं आयु.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
11: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976-86-9444.
12: Location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
15: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जेमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
14: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जेमिन्स पोटैटो चिप्स.
15: जेमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
16: एक मसालेदार चाय के बारे में सोचते ही बस एक ही नाम याद आए, यूनिक मसाला चाय. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का. सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो. सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार.
17: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए. फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए. अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077. दैट्स 0208-954-0077. आपकी मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है.
18: ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087 672142.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
21: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
1: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
2: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
1: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है,
4: कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208-954-0077। दैट्स 0208-954-0077। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
5: ट्रेवल इन स्टाइल,
6: ट्रेवल इन स्टाइल,
5: ट्रेवल इन स्टाइल।
7: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
8: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुन रहे हैं गोल्ड ड्राइव विद सैंडी शाह।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
5: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
6: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
7: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
9: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
10: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
9: ये तो बताओ कोई पता चला?
10: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
9: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
12: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा
1: अवेलेबल एट फॉल्कन स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड।
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
3: ICICI बैंक मनी टू इंडिया विच इज ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस 16 कंट्रीज इज नाउ इन द UK।
4: वाओ, सो सेंडिंग मनी टू इंडिया इज इंस्टेंट।
3: यस, फ्रॉम एनी बैंक इन द UK टू एनी बैंक इन इंडिया। रियल टाइम एक्सचेंज रेट्स, राउंड द क्लॉक सपोर्ट। नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो गेट अ प्रेफरेंशियल रेट एंड जीरो फीस ऑन आवर फर्स्ट 5 ट्रांसफर्स।
5: डाउनलोड ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
6: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in 3 different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and garak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
7: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
8: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Gold Drive. Gold Drive with Sandy Shah. Oh yeah. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price
0: at all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलीडेज साथे.
3: सीरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
4: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
3: 0116266 2481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो serineholidays.co.uk पर.
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
6: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
5: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
6: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
5: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
6: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
5: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
8: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
7: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
8: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
7: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. आज ही एक्शन ले 0208-907-2444.
10: Looking to buy gold, silver or platinum bars in the UK? Visit buybullion24.co.uk for competitive prices, trusted service and secure online buying. For more details, WhatsApp on 0737522418. Start investing with confidence today at buybullion24.co.uk.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus, don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. On this week's Leica Extra podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
12: This is a festival that has been taking place for 28 years now.
13: We are having a big problem getting people back into cinema.
14: There is a completely different game happening behind the scenes.
12: You've had stars like Zeenat Aman attend.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
15: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशनवाइड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर community
1: and the best part townhouses and villas greens start from just £711,000
2: to book call our london office on 02039635757 greens by danube prime location
1: high appreciation
2: in dubai
3: bole tu kya kar raha hai re
4: are guru aapke show ki ticket dhoond raha hu
5: ye to batao koi pata chala
6: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
7: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208514540 बुक ऑनलाइन एट Eventbrite
9: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
10: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं अभी कॉल करें 0208907244 अपनी फैमिली को सिक्योर करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208907244
11: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
14: This is Sandy Shah on Gold Drive. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Travel in Style specialise in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Fully bonded, Travel in Style.
3: Travel in Style.
2: Travel in Style.
3: Travel in Style.
4: Hillaro ane Umbro jevi acclaimed Gujarati films na national award winning director Abhishek Shah par ek var leine aavya che ek emotional comedy.
5: Atamar to jindagi che ke film ni vaarta.
4: Ek you heart ji kai feel kartu notu.
5: Ani vaarta adhuri se bhai.
4: But one beat and everything changed.
6: Tamaru hriday धबकारो चुकी जाए छे.
4: धबकारो स्टारिंग देवेन भोजानी अने आर्जव देसाई.
7: लोकेशन अहीना करेला अहीज भोगवाना छे.
4: इन सिनेमास नहीं आयू.
8: लंडन एंटरटेनमेंट दी सब तो वड्डी रात आ रही है. फोर पिलर्स एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड प्रेजेंस एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026. लाइव परफॉर्मेंसेस बाय नवीन कुंद्रा, मंजीत बॉबी, निकी सेठी ते होर जबरदस्त आर्टिस्ट्स. 9th मई शाम 6 बजे द सेंटर बैंकवेटिंग सुइट साउथ हॉल. फॉर टिकट्स कॉल मंजीत बमरा एट 7956300367. एबीपीडी अवार्ड्स यूके 2026 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
9: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
10: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
9: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
10: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
9: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
12: गारंटेड.
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
13: साउथ हॉल ट्रेवल.
12: फोन 0208574 8410.
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
16: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Gold. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
17: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: मुंबई जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लंदन में एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो में तीन नए फीचर्स हैं, पहले आवर में यादों की बारात, सेकेंड आवर इमोशन ऑफ द डे, थर्ड आवर इज ए गजल कवाली। आज है मंगलवार, ट्यूजडे, तो आज होगा टेरिफिक ट्यूजडे। तो टेरिफिक ट्यूजडे में कौन सा गीत लाई होगी अश्विनी, जरूर सुनते रहिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और सारे के सारे प्यारे के प्यारे लिसनर्स अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगा रहे हैं। हमेशा की तरह आते से कुछ ना कुछ तो असाइनमेंट या होमवर्क देगी अश्विनी, एंड दैट इज रिगार्डिंग आप। आपके पेरेंट्स की ऐसी कौन सी आदत है जो आप में भी आई है? ध्यान से सुनिएगा, आप में अपने पेरेंट्स की ऐसी कौन सी आदत है जो आपने जाने अनजाने में पिकअप कर लिया? फॉर मी, मेरी आई, माई मदर, उनकी आदत थी कि हर चीज़ में नमक ऊपर से जस्ट ऐड करती थी। ओके, पता नहीं वो आदत थी जो भी था, एंड नोइंगली अननोइंगली आई हैव पिक्ड दैट अप। ओके, तो हल्का सा बिल्कुल ही दो तीन ही दाने डालूंगी लेकिन आएगा, सॉल्ट ऊपर से ज़रूर आएगा। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, पफिनेस आएगा, ब्लोटिंग आएगा, वॉट एवर, सारी चीज़ें मुझे सब सब सब पता है, लेकिन स्टिल दैट इज़ समथिंग आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम माई आई। तो आप में अपने मम्मी या पापा में से कौन सी ऐसी आदत आई है, एंड देन यू लाइक यू नो यू डू दैट एंड देन यू जस्ट स्माइल अंदर के अंदर, क्या रही यार तो मैंने अपनी मम्मी से पिकअप किया, मैंने अपने पापा से पिकअप किया। चलो फटाफट मैसेजेस, एंड द अटेंडेंस रजिस्टर इज देयर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees and 50 paise. Remember to make your transfers via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold. Leica Gold.
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Leica Gold.
3: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
4: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
3: Call today on 01923 883 100,
4: or go to skylordcruiseandholidays.com.
3: Book with confidence.
4: We're Atoll protected. The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
6: Dil diya galla karange na.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:25। इट्स 7:25। आप सभी ने ट्यून इन किया है आप सभी का पसंदीदा लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। 5th of May ट्यूसडे में हो गया जून अगले महीने, मतलब आधा साल तो निकल गया। ये मुझे एक्चुअली लग रहा है ये साल ना ऐसे भाग रहा है, दौड़ रहा है। 2026 ना अपनी एक अजीब ही स्पीड लेके आया है। 2025 वॉज एन एक्सपीरियंशियल साल फॉर एवरी वन ऑफ अस। सभी कहते हैं भाई 2025 ने हमारी जो बैंड बजाई है, हाय हाय क्या बात है। तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेके लोग जो है ज़िंदगी में आगे चल रहे हैं। अभी आपको हमने जो गाना सुनाया था वो था शैलेंद्र सिंह और मन्ना डे की आवाज़ में ना मांगू सोना चांदी फ्रॉम बॉबी, विच वॉज रिलीज इन 1973। ऐसा कुछ नहीं है, सोना चांदी क्यों मतलब नहीं मांगिए ठीक है, पर कोई गिफ्ट देगा तो उसको ना भी नहीं बोलेंगे। एक तो गोल्ड का रेट भी हम यहाँ पे बताते रहते हैं ना। तीन अलग अलग टॉपिक्स। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। मैं आप सबसे पूछ रही थी कि अपने मम्मी या पापा में से कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपने उठा ली है नोइंगली अननोइंगली। तो नीलेश जी कहते हैं कि मेरी मम्मी जो है वो ग्रीन चिली फ्राई करती है, तो मुझे अचार की ज़रूरत नहीं पड़ती वाइल ईटिंग खाना। अरे यार वो फ्राइड ग्रीन चिली, हाँ, मेरे तो सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। आई एम अ चिली फैन, आई लाइक स्पाइसी फूड। हाँ तो फिर डेफिनेटली आपके यहाँ जब भी कभी आएंगे नीलेश जी तो ग्रीन चिली हम खाने वाले हैं। साथ ही रानी जी कहते हैं कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि भाई जितना चाहिए खाना उतना लो, एकदम से बहुत भर भर के थालियाँ मत ले लो। करेक्ट। वहीं पे वैनकुवर से हरप्रीत जी, ये अभी यूके आके गई हैं कुछ दिनों के लिए और कह रही हैं कि मैं अभी वापस आई हूँ यूके से और बड़ा अच्छा उनका स्टे रहा। साथ ही कहती कि मेरी मम्मी सैलेड और योगर्ट हमेशा लेती थी खाना बनाते समय, तो मतलब खाना खाते समय, और वही चीज़ आ जाती है यू नो हम लोगों में भी। दैट्स व्हाट एक्चुअली इट इज़, कि हम अपने पेरेंट्स से नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें पिकअप करते हैं। जैसे मैंने म्यूज़िक सुनना अपनी मम्मी से पिकअप किया था, प्लस सॉल्ट भी ऊपर से डालना है ना। ओके, अभी शो में बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट ट्रैक इज लता मंगेशकर की आवाज में, दिस इज फ्रॉम मुगले आजम नौशाद के संगीत तले।
0: ये है लाइका गोल्ड द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: Updates for London at Breakfast and Drive.
1: भाई मजा आ गया ना ये गीत सुन के. एक्चुअली मैंने आज जब प्लेलिस्ट बनाई तो मैंने सोचा कि ये वाला गीत ना बहुत टाइम से शायद प्ले नहीं हुआ है, व्हाई नॉट टू प्ले इट नाउ, है ना. तो ये रात फिर ना आएगी, विच वॉज रिलीज इन 1966. उस फिल्म से आशा भोसले एंड मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में सुनाया आप सभी को ये गीत. अच्छा, घर की छोटी छोटी बेसिक सी जो चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते जाते हैं उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, बताऊँगी उसके बारे में कुछ ही देर में. यादों की बारात, फर्स्ट आवर का पहला हमारा ये फीचर है ना. तो मिस्टर एंड मिसेस 55, विच वॉज रिलीज इन 1955, गीता दत्त की आवाज़ में आप सभी के लिए ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: मैं टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही, एक बार अश्विनी टाइम चेक तो करा दो जरा, बस तुम तो मतलब गप्पे मारे जा रही हो और अच्छे अच्छे गाने प्ले किए जा रही हो। अच्छा ये मैं नहीं कह रही, ये आप सब कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप प्ले कर रहे हो, सारे ही हमारी फेवरेट्स हैं। तो देखो ना आपकी और मेरी चॉइस कितनी एक जैसी है ना। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में जब प्यार किसी से होता है, 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसी फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। नेक्स्ट ट्रैक आंधी फिल्म से, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में। आंधी वॉज रिलीज इन 1975। उस फिल्म से आखिरी गीत इस आवर का आपको सुना रहे हैं, जो हमें ले चलेगा 8 o'clock की न्यूज़ की तरफ। सेकेंड आवर होगा इमोशन ऑफ द डे, दैट इज टेरिफिक ट्यूजडे। टेरिफिक वर्ड ही ऐसा टेरिफिक लगता है ना ऐसे कि क्या ही आने वाला है। चलो सुनो क्या आने वाला है, तो यहीं पे
1: लंदन मिडलैंड्स मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: क्या मैं अकेली ऐसी हूँ जो इस गीत पे इतने पैर थिरका रही थी और इतना डांस कर रही थी कि आप सब भी इसे एंजॉय कर रहे थे? भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो हमारे अटेंडेंस की तादाद जो है, तादाद मतलब द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ लिसनर्स जो हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में आके अपने अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। अभी मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हाजिर हो आप लोग अपनी अपनी हाजिरी यहाँ पे जता रहे हैं, बता भी रहे हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो भाई तहे दिल से कहेंगे धन्यवाद आप सबको। अच्छा, तो कल दोपहर 2 बजे, ध्यान से सुनिएगा, कल दोपहर 2 बजे इंस्टाग्राम लाइव होने वाला है एंड मी अलॉन्ग विथ अंकुर, अंकुर जो हमारे ग्रेटर मैनचेस्टर के जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो लाइव आने वाले हैं, मैं लाइव आने वाली हूँ और हमारी रेडियो वाली, तो हम तीनों मिलके ना बहुत मस्ती और गपशप करने वाले हैं। अभी रेडियो के अलावा और क्या क्या गपशप होने वाली है वो तो कल जब आप इंस्टाग्राम लाइव आएंगे दोपहर 2 बजे तब आपको पता चलेगा। सो राम बलराम से आपको सुनाया था यार की खबर मिल गई, आय हाय आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज़ में, माई फेवरेट कपल रेखा जी एंड अमिताभ बच्चन, और उसके पहले था जॉनी मुखर्जी की आवाज़ में संगीत, ये गाना जो है फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ पे। नेक्स्ट ट्रैक आज नौशाद जी की डेथ एनिवर्सरी है तो ऑब्वियसली उनके संगीत तले ये बहुत ही प्यारा गीत, वॉल्यूम आप रखना चाहते हैं, लो रखना चाहते हैं, जैसे भी रखिए, गंगा जमुना से ये गीत।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 32 मिनट्स पास्ट 8। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि घर की जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, इन्जॉय करते हैं, उसकी भी एक एक्सपायरी होती है। तो भाई बता दें आपको कि जो स्पंज और स्क्रबर्स आप यूज़ करते हैं ना बर्तन धोने के लिए, वो हर दो हफ्ते में फेंक देना चाहिए। डिस्पोजेबल रेजर्स 1 to 2 वीक्स, डिश सोप 12 से 18 महीने, चॉपिंग बोर्ड हर एक साल में फेंक दो, टपरवेयर 3 महीने, टपरवेयर उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने, ब्लीच 6 to 7 मंथ्स एंड लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है 6 से 12 महीने। अगर आपने देखा नहीं है डेट्स, प्लीज़ देख लीजिए। पिलोज, जी हाँ, जो पिलोज आप लेते हैं अपनी गर्दन के नीचे 2 से 3 साल बाद, उनको टाटा बाय बोल दो। टॉवल्स 1 से 3 साल एंड योर स्लीपर्स विच यूर यूजिंग, आपकी चप्पल्स जो यूज करते हैं उसे 6 महीने में टाटा बाय बाय, एंड योर रनिंग शूज 1 ईयर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं। टूथब्रश भी हाँ, 3 महीने से ऊपर नहीं ज़्यादा, बस यू हैव टू से बाय टू योर टूथब्रश एज वेल कि यार हो गया इसका काम, अब इसको बोलो जाओ। कुछ चीज़ें ना हम यूज़ करते ही जाते हैं, उनको बबाय बोलते ही नहीं है, लेकिन हर चीज़ की होती है एक एक्सपायरी। इसीलिए आज आपको दी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब हम चल रहे हैं आगे एंड दैट इज़ इमोशन ऑफ द डे। आई हाय टेरिफिक ट्यूसडे के लिए हो गए रेडी, वॉल्यूम अप करो क्योंकि ये गाना आप लोग इन्जॉय तो करोगे, साथ में डांस भी करने वाला है। गीत कौन सा है? मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में तीसरी मंजिल से। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा।
0: ये है लाइका गोल्ड, लाइका गोल्ड। दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय कुमार शानू लाइव एट रॉयल अल्बर्ट हॉल विद एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो। वन डेज ओनली, मई 25th। इमोशन ऑफ द डे।

0: Extra podcast update.
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में हमारा एपिसोड नंबर 14 आ गया है, द यूकैफ राउंड टेबल होस्टेड बाय हमारी अपनी रूबी रजा, गेस्ट द टीम ऑफ यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 1 मई से 10 मई तक चलेगा। पास्ट एपिसोड्स में विल्सन प्रोपेट, द अप्रेंटिस अनफिल्टर्ड, द होम स्कूलिंग डिबेट, इसमें मैं आपको देखने वाली हूँ। मैंने अपने विचार जो है इसमें बिल्कुल कड़े तौर पर रखे हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Like Our Radio. Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
0: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
0: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Every child deserves a childhood, but many children in India are forced to leave school too early. Cry UK is helping children stay in school and build brighter futures. Just £25 could help 2 children continue their education. Visit www.ukcry.org and help to make a difference.
5: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
6: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
5: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
6: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
5: दर्शन पण अने यूरोप पण।
6: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
5: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
6: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
7: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला। प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मई एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर। यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन और इन स्टोर। फ्रॉम स्टनिंग गिफ्ट टिन्स टू रसमलाई एंड मोतीचूर लड्डूस, डोंट वेट, द ऑफर एंड्स ऑन द 10th ऑफ मई।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। On this week's Leica Extra podcast, it's a UK Asian Film Festival roundtable special hosted by Ruby Raza.
8: It's such a pleasure to welcome the team of the UK Asian Film Festival.
9: What is particularly very touching for me, a lot of these films will never see the light of day. They won't get distribution. So you miss them at these festivals, it's gone.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights. This is Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.83 Indian rupee, 377.6 Pakistani rupee, 166.23 Bangladeshi taka, 85.37 Afghani, 433.51 Sri Lankan rupee, and 1.35 US dollars.
10: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £108.69 per gram.
10: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. तीन अलग अलग घंटों में अलग अलग फीचर्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं. पहला आवर यादों की बारात, सेकेंड आवर इमोशन ऑफ द डे, तो टेरिफिक ट्यूजडे ऑलरेडी हो चुका है. थर्ड आवर गजल सुनाऊंगी या कव्वाली, जरा बताइए आपका क्या अंदाज है कि आज क्या सुनाने वाली हूँ मैं. आई एम श्योर दो हफ्तों में आपको पैटर्न समझ में आ गया है. देखते हैं कौन देगा सही जवाब. लेकिन सही जवाब के लिए ना जो भी गीत मैं सुनाऊंगी वो होगा. कोई यहाँ पे कोई गिफ्ट और प्राइज नहीं है इसके अलावा कि मेरी आवाज़ आप सबके लिए है ना. तो एक अजीब गरीब घटना में इटली में ऐसा हुआ कि एक आदमी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा खाते पीते हुए बहक गए, और पीने के बाद जो है वो दोस्तों के साथ में किसी जंगल के पास वाले एरिया में जाके उनकी गपशप चल रही थी, और फिर थोड़ा जो लिक्विड उन्होंने लिया, उस लिक्विड के सहारे जो है वो जंगल की तरफ निकल गए. अब वो गायब रहे, भाई एक दिन आए नहीं वापस घर पे. तो फिर दोस्तों ने और फैमिली मेम्बर्स ने इन साहब के नाम से पुलिस में कंप्लेन किया. पुलिस उन्हें उस जंगल में ढूंढने आई. अब पुलिस जब जंगल में उन्हें ढूंढ रही थी तो ये साहब जो हैं ये खुद भी पुलिस के साथ में खुद को ढूंढने में मदद करने लगे. तो जब पुलिस में से किसी ने इन साहब का नाम लिया तभी कहता रहे मैं तो यहाँ पे हूँ. तो पुलिस भी हक्का बक्का कि भाई एक तो हम जब ढूंढ रहे थे तो तुम आए कहाँ से. अच्छा आए तो आए और पूछा भी नहीं कि हम किसे ढूंढ रहे, और तुम्हें ढूंढने निकले और तुम ही हमें मिल गए यहाँ पे. सो ऐसे फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं. कुछ वियर्ड सी न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़, कुछ आपकी हालचाल और कुछ हमारे हालचाल. तो हमारे हालचाल सुनने के लिए कल इंस्टाग्राम लाइव होने वाला है 2:00 PM. बिल्कुल कुछ सवाल अगर आपके हैं मेरे लिए तो ज़रूर भेज दीजिएगा. देखिए हमारा इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट क्या है, कोई सवाल मेरे लिए और अंकुर के लिए है तो ज़रूर पूछिए. कल मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन होगा इंस्टाग्राम लाइव पे. चलते हैं आखिरी गीत की तरफ. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट. यहीं पे
10: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉनस्टॉप क्लासिक्स. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
11: द वेट इज नाउ ओवर. द किंग ऑफ मेलोडी Kumar Sanu live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
12: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
11: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
12: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
11: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-centre city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
7: Call 01923 883 3100. Atoll protected.

0: supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at quality food stores and all independent stores nationwide.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
5: साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
7: इवनिंग शो विद अश्विनी.
8: लाइका गोल्ड ऑफिशियली लंदन्स नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन.

0: into the sunshine on Leica Radio Network.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: Swinney, brightening up your weeknights.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 9:13 हो चले हैं। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। दुनिया जहां में जहां पे भी आप हमें सुन रहे हैं, तहे दिल से कहेंगे धन्यवाद आपको कि आप हमारा साथ निभा रहे हैं और हम आपका साथ निभा रहे हैं। बहुत ही फैंटास्टिक म्यूजिकल जर्नी चल रही है जो प्लेलिस्ट आज आपके लिए लेके आई हूँ। आप सब बहुत ज़्यादा खुश हैं इस प्लेलिस्ट से, तो ज़रूर वादा कल के लिए भी, कल होगा फील गुड वेंसडे। तो वेंसडे तो वैसे ही मेरा बड़ा फेवरेट दिन है भाई, मिड वीक आ जाता है, दो दिन इधर दो दिन उधर। सो अपने चहेते दिन तो और भी फैंटास्टिक म्यूजिकल लिस्ट आप सबके लिए मैं लेके आऊँगी। किशोर कुमार की आवाज़ में ड्रीम गर्ल से सुनाया किसी शायर की गज़ल, और उसके पहले कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अग्नि साक्षी से सुनाया आपका ओ यारा दिल लगाना। नेक्स्ट ट्रैक सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी की आवाज़ में साथी फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1968, मेरा प्यार भी दू है। आप अपना साथ देते रहिए, और भी फैंटास्टिक ट्रैक्स लाइंड अप आप सबके लिए।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: यस, टिक टिक करते हुए घड़ी घड़ी एक बार फिर से समय मिला लो। इट्स 28 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। कल दोपहर 2 बजे इंस्टाग्राम लाइव पे आने वाले हैं मैं और अंकुर। अंकुर जो हैं हमारे प्रेजेंटर हैं, जी हाँ, वहाँ पे ग्रेटर मैनचेस्टर में वो हमारे प्रेजेंटर हैं लाइका के। तो वो और मैं साथ में मारने वाले हैं गपशप ऑन इंस्टाग्राम लाइव। तो आपके कुछ सवाल है तो ज़रूर हमसे उस टाइम में आइएगा इंस्टाग्राम लाइव पे, पूछेगा, मस्ती मजाक गपशप इंटरेक्शन होने वाला है। तो देखते हैं कल का समय आप लोग कितना हम लोगों को साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो आप सबको अभी सुनाया बहुत ही प्यारा गीत, और ये गीत आप सब ने बहुत पसंद किया। समाधि फिल्म से सुनाया था आपको आशा भोसले की आवाज़ में, जब तक रहे तन्मय जिया। सबसे पहले थैंक यू आप सबको फिर से, क्योंकि आप सब लोग मुझे पूछते रहते हैं कि अश्विनी खाना वाना खा के आई हो या नहीं, चाय लिया या नहीं, कॉफ़ी लिया नहीं, 3 घंटे यहाँ पर बैठ के शो कर रही हो। सो मज़ा भी आ रहा है हमें, एंड हमारे बारे में हालचाल पूछते रहती, तो हम भी आपके बारे में डेफिनेटली हालचाल पूछेंगे। थैंक यू राजीव पटेल जी, आपने कहा अश्विनी खाना खा के आई हो क्या, कितने अच्छे अच्छे गाने लगा रही हो। अच्छा, तो मैं रोज़ अच्छे गाने नहीं लगाती क्या? जी, आज मैंने स्पेशली कुछ खाया। यस, आई हैड समथिंग वेरी स्पेशल, एंड दैट इज़ गुड़ होता है ना, जैगरी। रोटी जो है घी में हल्की सी सेक लीजिए, उसमें जैगरी डाल दीजिए। एक तो मैं मिठोरी हूँ ना, मुझे मीठा बड़ा अच्छा लगता है। सो आई हैड दैट जैगरी वाला रोटी, है ना, तो हल्का सा घी में मैंने उसे फ्राई वाई तो नहीं किया, हल्का सा सेक लिया और उसके ऊपर फिर बाद में डाल दिया जैगरी। सो वो मीठा मैं आज खा के आई हूँ। सो रोज़ ऐसा खाऊँ राजीव जी? हाँ, मैं इन मराठी वी से गुड़ का कुछ करा। So I had that today, and because कई लोग जानते हैं मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मराठी में भी मैसेजेस लिखते हैं और बड़ा मज़ा आता है आप लोगों से मराठी में भी गपशप करने का। ओके, सो मैंने आप सबसे पूछा है कि भाई थर्ड आवर में गज़ल सुनाऊंगी या कव्वाली, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत कव्वाली। बरसात की रात से मोहम्मद रफ़ी मन्नाडे आशा भोसले की आवाज़ में, वॉल्यूम अप रखिएगा क्योंकि ये कव्वाली आप सब बहुत पसंद करने वाले हैं। जी, अब पैटर्न कैसा है ना कि अल्टरनेट डे, एक दिन मैं कव्वाली सुनाती हूँ, एक दिन मैं सुनाती हूँ गज़ल। तो आप सबके लिए कव्वाली आपके अपने पसंदीदा रेडियो पे एंड आपके पसंदीदा शो द इवनिंग शो विद अश्विनी में।

0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Subrang Arts presents Ramjhat in association with Laika Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07976-869-444.
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
7: This Eid skip the queues and save with Ambala pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eve Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit startours.co.uk.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 128.77 Indian rupee, 377.5 Pakistani rupee, 166.18 Bangladeshi taka, 85.32 Afghani, 433.37 Sri Lankan rupee, 1.35 US dollars.
10: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
10: Laika Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
9: Gold is currently trading at £108.69 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
9: मिला लेते हैं एक बार घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 44 मिनट्स पास्ट 9 टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है अश्विनी टाइम फॉर यू टू से बाय टू ऑल योर लवली लिसनर्स आप सब ने दुनिया जहां के जिस किसी देश से जिस किसी जगह से साथ दिया आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने मेरा साथ दिया और साथ में हमारे गानों की वजह से आपका ये शाम का समय बहुत सुहाना बीता है हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि भाई प्यार जो है ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है प्यार दो प्यार लो जिंदगी खूबसूरत है उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, एंड आई एम श्योर आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने पावर का मिसयूज करना चाह रहा होगा, क्योंकि संगीत जो है वो एक्चुअली इतना बायस्ड है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है। और आप सभी जो हैं अपने इस म्यूजिकल जर्नी में आ जाते हैं रोज शाम 7 से 10 बजे तक। तो कल शाम मिलने का वादा करके निकलूंगी यहाँ से। अपने आप का खूब ख्याल रखिएगा एंड हैव अ फैंटास्टिक डे टुमारो। कल शाम मुलाकात होगी आपकी और मेरी यहीं पे आपके अपने पारिवारिक रेडियो पे। गुड नाइट।
11: ये है लाइका गोल्ड।

0: bringing to you the best classics all night. This is Like a Gold.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर
4: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel, at all protected.
1: This Eid, skip the queues and save with Mbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait, the offer ends on the 10th of May.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
11: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदाबहार गीत

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089222344
4: 24 आवर लाइन। यूरोप और यूके के अपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02033736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
8: This Eid, skip the queues and save with Umbala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
9: Leica Radio Network. Proud to support the Asian Founders Awards by Barclays Eagle Labs and De Montfort University Leicester. Nominate an Asian founder in one of the 9 categories. Log on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app for details.
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: इज लाइक अ गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com।

0: ये है लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 पाउंड्स
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
0: In Dubai.
2: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
3: Atif Aslam live in the UK.
4: Oh, Julilal Kalandar, mast, mast, da, mast.
2: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS.
2: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी
6: मत जाओ काना क्यों जा रहे हो
7: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं
5: देखिए कृष्णा राधा रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला
7: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा
5: कृष्णा अवतारम 7 मई से आपके नजदीकी सिनेमाज में
7: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी
8: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर